0: सत्यता युग लवेला सच्चे तेरे कर्ण सच्चे ब्राह्मण सच्चे तेरे ओ सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरे कर्म सच्चा निशान सच्चे तो दा केला करू सच्चे शब्दान सच्चे सब
1: सच्ची तेरी से सच्ची सलाह सच्ची तेरी खुद सच्चे पाशा ना सच्चे सच्ची जो मर्ज में सो कच कच माला बैला
0: बड़ी बड़ी बड़ा बताला बड़ी बड़ा सच न्यो बड़ी बड़ा जने चलता बड़ी बड़ा जाने वाला बड़ी बड़े कुछ सब पाओ बड़ी बड़ा जो पूछना दात बड़ी बड़ा जाए आप नानक कथनी जाए खीता करण सर्व जाए महला दूजा ए जग सच्चे की कोठड़ी सच्चे का विजवास इतना उसमाय लेकिन हुक्म कर विनाश इतना पानी कर लेकिन माया श्रीनिवास एम भी आखने जा बेच देवने यार नाच तो गुरुमुख जानी जान को आप करे।

मूर पंडित मुगी तो कितने के प्यार धर्मिन धर्म करेगा वावे मंगी मुगद्वार जति सावे दुख न जाने छड़ बैकर बार सबको पूरा करोगे कितना बुझा के बस परवाना पीछे पाई गया नानक तो ले जा पे बस स्वतिक नानक।

0: का जुमला पहला पहला सुता पर सुते बैठा सुते के कुछ मुझे मिट जाए सुता और मुझे वेला का पना चलू मुझे जाए सकते यार किसे लगा दो अंदेवता पने देवता संत देवता लू पनिमा पाया कृत तां हो अपार
1: पापी सोतन का दिया तो कब आया तेरे नामों के बिना मेरा स्का नान के बजानी है
0: पंड जबी है पंड लिमी है पंड मंगल रहा पंडो में दोष के पंडो चले रहा पंड मुआ पंड पल के पंड हो बना मंदा आखिए जब मेरा जान पंडो

हर पुरख निरंजन जय हर सिमरन बया तै उपाधिगत कीनी बड़ पागी हर जपना।

हर हर नाम गोविंद, जप मन हर हर नाम गोविंद, पागी गुरु सतगुरु पाया गुण गावत परमानंद, जप मन सतनाम सतनाम।

चार पाप दो सिंह कुमकुम अब कैसे गुन गई ये जप मन सतना। चार पाप दो सिंह कुमकुम अब कैसे गुन गई है ऊठ तो बैठ ठेंगा पर कब तक मूड लेके।

जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उज्जल होइए, जय त्याई हर पुरख निरंजना, जय हर सिमरन भया, तै अपार गत कीनी, बड़ पागी हर जपना, बड़ पागी हर जपना। आखिरी पंक्ति है,

इस मार्ग से चलना ठीक नहीं है। अते अपने आप ही जिधर नू मन ने तोरिया उधर नू तुर पई, जिधर नू ख्यालां ने प्रेरिया उस पासे नू ही चल पाए। सतगुरु नू अपनी जिंदगी दा रहनुमा नहीं बनाया, कहिंदे सतगुर पूछ ना मार्ग चाली, सुती रहन विहानी। जिंदगी एक रात है, अते उस इंसान दी जिंदगी दी ये जो रात पाप जीवन जिंदगी पूरी लाइफ सुत्या सुत्या गुजर गई, वो सारा जीवन चलता ते रहा लेकिन किते भी पहुंचया नहीं। सतगुर पूछ ना मार्ग चाली, सुती रहन विहानी। उस इंसान दा हाल सुनो जिसकी सारी जिंदगी गुजर गई, सारी जिंदगी वो चलता रहा, कुछ ना कुछ करता रहा, किसे ना किसे रस्ते ते तप्या ही हुंदा है ना इंसान, पर कहिंदे हन वो पहुंचया किते नहीं। सतगुर पूछ ना मार्ग चाली, सुती रहन विहानी। नानक बालतन रांडेपा, बिन फिर तन कुमलानी। उसका हाल ए है, उस इंसान दी जिंदगी अखीर जाके इस तरह हो जाएगी, इतनी दुखदाई, इतनी फ्रस्ट्रेटेड, इतनी कंफ्यूज्ड, इतनी रिग्रेटफुल, इतनी डिसअपॉइंटेड, इतनी मिजरेबल। जिसले महाराज ने कंपेयर कीती है एक मिसाल, नानक बालतन रांडेपा, जिस तरह कोई बालपन दे विच ही युवा अवस्था दे विच ही रंडी हो जाए, उसनू रंडेपा भोगना पै जाए, सारी उम्र रंडेपा भोगना पै जाए। कहिंदे जो ओ दुख है उही दुख उस तों घट दुख नहीं है उस इंसान नू जिसने सतगुरु दे मार्ग ते ना चल के अपना जीवन गुजारिया है। अते बिन पिर धन कुमलाणी, पिर तो बिना, पति तो बिना, जिसका बालपन दे विच ही पति गुजर गया, उसनू रंडेपा भोगना पै गया, ओ जीव स्त्री जो है उस दुख दी मारी कुमला जांदी है। गुरु बाबा जी आखदे हन जिसने सतगुरु दे मार्ग नू साधु दे मार्ग नू अख्तियार नहीं कीता, उसका जीवन समझो एक रंडेपे वाला जीवन है, अते उसका जीवन इस दुख दे नाल कुमला आ जाएगा। सतगुर पूछ ना मार्ग चाली, सुती रहन विहानी। नानक बालतन रांडेपा, बिन फिर धन कुमलाणी। है एक सनेरियो है जिन्होंने सतगुरु दे मार्ग नू ना समझिया, ना उस मार्ग ते चले, चले उस मार्ग ते जिस मार्ग ते चलन लई उन्हां दा मन करदा रहा। हुण दूसरा सनेरियो, दूसरी हालत, बाबा जी कहिंदे हन जिहड़े मार्ग ते चले, साधु दे दसे होए मार्ग ते चले, ए हुण नोट करन वाली गल है, जिहड़े साधु दे दसे होए मार्ग ते चले, जिन्हां नूं साधु दे नाल गोष्ट विचार करन दा मौका मिलिया, साधु दे नेड़े होण दा मौका मिलिया, साधु दी संगत मिली, हुण उन्हां दी अवस्था, उन्हां नूं फल की मिलदा है, महाराज जी दसदे हन। हर जन सगल उधारे संग के, हर जन सगल उधारे संग के,

पुनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुख हरे। जन्मा जन्मांतरा दे कहिंदे उन्हां दे जिहड़े दुख हन पिछले जन्मा दे वी कहिंदी ओह भी माफ हो गए। अगे चलदे हन, मार्ग चले तिनी सुख पाया। जिहड़े साधु दे दस्से होए मार्ग ते चलदे हन कहिंदे इह गारंटी है कि उन्हां दे जीवन दे विच सुख आएगा। मार्ग चले तिनी सुख पाया अते जिन्हां नूं साधु दे नाल बचन बिलास गलबात सत्संग ज्ञान गोष्ठ करन दा मौका मिलदा है कहिंदे जिनस्यों गोष्ठ, जिन्हां दे नाल साधु ने गोष्ठी कीती विचार कीती से तरे कहिंदे हन ओह तर जांदे हन। साधु दी अमृत बाणी सुन के ओह तर जांदे हन। मार्ग चले तिनी सुख पाया जिनस्यों गोष्ठ से तरे। अल इथे बस नहीं कहिंदे हन बूढ़त घोर अंध कूप में जेड़ा इस संसार नूं महाराज जी ने एक जहर दा खूह आख्या है। संसार नूं जहर दा खूह आख्या है। संसार बिख्या कूप, कूप मैंने खूह बिख्या मैंने जहर। कहिंदे जिहड़े साधु दी संगत दे विच आ गए, जिन्हां ने साधु दे नाल गोष्ठ कीती, जिहड़े साधु दे मार्ग ते चले कहिंदे बूढ़त ओ जिहड़े डुबदे सी ना डुब रहे सी घोर अंध कूप में, उस खूह दे विच जिथे घोर अंधेरा है ते जहर है उच डुब रहे सी। ओ डुबदे डुबदे कहिंदे से साधु संग पार परे, साधु दी संगत दे नाल ओ चो पार निकल आए, ओ चो बच गए। कितनी शक्ति है साध संगत च, साधु दी संगत च ते साधु दे दस्से होए राह ते चलन दे विच, साधु दस्से होए राह ते चलन विच। कहिंदे हन बूढ़त घोर अंध कूप में से साधु संग पार परे। अखीर लाइन च कहिंदे हन महाराज जी जिनके भाग बड़े है भाई, जिन्हां दे बहुत वड्डे भाग जाग पैंदे हन, जिनके भाग बड़े है भाई तिन साधु संग मुख जुरे। कहिंदे जिन्हां दे बहुत वड्डे भाग हन उन्हां दे साधु संग मुख जुरे, भाव उन्हां दी जिंदगी साधु दे नाल जुड़ गई, ओ साधु दे नाल जुड़ गए, साधु दे नाल उन्हां दा रिश्ता हो गया, साधु उन्हां दी आत्मा दे विच बैठ गया, उन्हां ने साधु नूं अपने जीवन दे विच अपने अंदर वसा लिया ते सारा जीवन अंदर वसे हुए नूं कदे ओ भुले नहीं, उन्हां दे अंग संग साधु रहे। गुरु बाबा जी आखदे हन जिनके भाग बड़े है पाई तिन साधु संग मुख जुरे। महाराज जी कहिंदे जो ऐसे शख्स हन, जो ऐसे जीव हन जिहड़े साधु दे संग जुड़े हन, साधु दी संगत दे नाल इस संसार रूपी खूह चों जहरीले खूह चों पार निकल गए हन, जिहड़े साधुआं दे नाल बैठ के विचारां करदे हन गोष्ठी करदे हन पुछदे हन समझदे हन अते उन्हां दे दस्से हुए रस्ते ते फिर चलदे हन, महाराज कहिंदे हन उन्हां दी इतनी वड्डी महिमा। कहिंदे हन तिनकी धूर बंश है नित नानक। महाराज जी कहिंदे मैं उन्हां पुरशां दी चरणां दी धूड़ी बंशदा हां, उन्हां दे चरणां दी धूड़ी मंगदा हां। नानक प्रभ मेरा कृपा करे, मेरा प्रभु कृपा करे मेनू अजिहे लोकां दी अजिहे पुरशां दी अजिहे गुरमुखां दी चरणां दी धूड़ी मिले तां ओह मैं मत्थे नूं लगावां जिहड़े साधु दे दस्से होए मार्ग ते चलदे हन, क्योंकि उन्हां नूं सारे ही फल मिल जांदे हन, सारे फल मिल जांदे हन जिहड़े साधु दे दस्से होए मार्ग
ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਜਨ ਸਗਲ ਉਧਾਰੇ ਸੰਗ ਕੇ, ਹਰੀ ਦੇ ਜੋ ਜਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ। ਸਗਲ ਉਧਾਰੇ ਸੰਗ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਭੈ ਪੁਨੀਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਨੀਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਤਿੰਨੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਖੀ ਰਹੇ, ਬਸ ਸੁਖੀ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸੁਖੀ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਜੋੜਨਗੇ, ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਗੇ, ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਵਸ਼ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖੂਹ ਚ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸਾਧੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗਾਓ।

आरण मत वेद हथियार बौखला अगन तपता पांडा भाव अमृत दार घड़िए शब्द सच्ची टकसा दिन को नजर कर।

0: जोगी संत्या वंजितियन के नाम करता सुख मुटना नंदन काया कागर सत्या मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगा सा सगुणा सब करे संसार
1: दोना यारा।

रुक रुक फिर बताइए ज्ञानी सतगुरु संतों का धर्म गिथवाओ तेरे तेरा जत का जोर रखे रथवाओ द्वापर रथ तपे का सत

मैं से परम गति सब तो उच्ची अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरु नु मिलन दी जो है उपाय है, किस तरह साध संगत के द्वारा। सो साध संगत ही वो टंग है, साध संगत ही वो विधि है, साध संगत ही वो रस्ता है जिसके द्वारा प्राणा दा नाथ प्यारा वाहिगुरु मिलता है। अगलिया पंक्तियां दे विच भगत गुरदास जी ये दसणगे कि साध संगत उन्होंने किवें कीती।

के देहन में परम गति पाले ही सब तो उच्ची आत्मक अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरु दे मिलाप दी पाले ही है। भक्त रविदास जी दस देहन के मेनू ते सात संगत दे द्वारा ही प्राप्त हुई, बाकी दे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच वी इस आईडिए नू इस तरह सपोर्ट करते हैं, इस दे नाल सहमत हैं, इस दे नाल इकमिक हैं, अते ताकीद करते हैं कि इंसान ए जिज्ञासु ए सीकर जे तू उस अकाल पुरख वाहिगुरु नू ढूंढना मिलना चाहना है जो कि तेरी जिंदगी का निशाना है तो सात संगत तो अलावा हो दूसरा कोई रस्ता नहीं। महाराज जी बाणी च इस तरह आखते हैं, कहते हैं

बहुत कमाल की गल बाबा जी बाणी चाहते हैं कि जो साधुओं का संघ है वो सिर्फ इत्थे ही काम नहीं आता, किसी होर दुनिया च भी काम आता। बाणी का प्रमाण सुनो, कहते हैं

साधु मित्र हन जिन्हां ने ढूंढ सज्जन संत पक्या जिन्हां ने पक्के होए आत्मक जीवन दे विच प्रपक साधुआं दे नाल अपनी मित्रता पाई है कहिंदे हन ए जिहड़े कच्चे हन इन्हां ने ते इत्थे ही छड़ जाना है कहिंदे हन तुहाडी रूह नूं ओह खुआर नहीं होण दिंदे तुहाडी रूह नूं पटकण नहीं दिंदे साधु संत दोनों जहाना दे विच तुहाडी जो है वह संभाल करते हैं इस करके साध संगत नालों वड़ा होर कोई टंग ही नहीं है भक्ति का इस करके होर सारिया विधियां जड़िया हैं वह साध संगत के मुकाबले दे विच कुछ नहीं हैं प्रेम नाल गाओ।

बहुत प्यारे वचन हैं। ये शब्द इतना इतनी प्रफाउंडनेस दे नाल भरिया पिया है कि असी इसनू अपनी जिंदगी अगर कमा लईए, इसनू वरत लईए, तो साडा जीवन भगत रविदास जी की तरह बदल सकता है। भगत रविदास जी कहते हैं, फिर मैं की कीता, जोई जोई जोरियो सोई सोई फट। जो भी अपने अंदर सुभा जोड़े हुए सन, सुभा पकाए हुए सन, इन्वेस्टेड हैबिट्स सन, कहिंदे उसनू मैं सारे नू सारे नू एक कचरा समझ के पाड़ दिता। जोई जोई जोरियो, असी कई दफा एक दफा किसी नाल नाराज हुंदे हां, फिर उसनू असी अपने अंदर जोड़ लेने हां, उस नाराजगी नू फिर सारी उम्र रखते हैं। किसी ने अगर सानू कोई बुरा शब्द किसी वेले कह दिता है, वह फिर सानू सारी जिंदगी याद रहिंदा है। जो भी उस परसन नू असी देखते हाँ, उस रेफरेंस दे विचों देखते हैं, उसे रेफरेंस दे विचों देखते हैं। मेरे नाल किसी ने बुरा किया है, उसनू असी भुला नहीं सकते। कहिंदे जोई जोई जो रहे हो, अगर 10 साल पहला किसी इंसान ने कोई गलत काम किया है, वह सुधर भी जाए तो साडिया निगाहों के जदों असी उसनू मिलांगे देखांगे तो असी यह कहांगे सानू पता है 10 साल पहला किदां दा हुंदा सी। दिस इज अवर नॉर्मल बिहेवियर। 10-15 साल पहला अगर किसी इंसान का जीवन किसी होर किस्म का सी, जो कि बहुता एक्सेप्टेबल नहीं सी, लेकिन वह इंसान अपना

जीवन बदल लेता है, उसने तो जीवन बदल लिया है, लेकिन लोगों ने ओपीनियन नहीं बदली अपनी। लोग उसनु यही कहते हैं कि जानते हैं असं इसनों 10 साल पहला की करता हूं, उसनु क्रेडिट दो, उसनु शाबाश दो कि इसने अपना जीवन 10 साल के कितने का कितने ले आता है, बदल लिया है, ना कि तुसी उसे नु ही देखना है। बाणी दे विच एक साड़ी जो अवस्था है, साड़ी जो आदत है, उसके प्रति बहुत खूबसूरत लाइन महाराज ने दर्ज की है। कहते हैं माखी चंदन पर हरे जह बिगंध तह जाए, माखी चंदन पर हरे जह बिगंध तह जाए। जड़ी मक्खी है वह चंदन ते नहीं बैठती, उन्हू त्याग दिंदी है, जह बिगंध जिथे गंदगी है उथे जाके बैठती, उथे जाके बैठती। तो असी भी अपने जीवन दे विच किसी की खूबसूरती नू, किसी दे शुभ गुण नू जदों देखते हाँ तो नाल दी नाल कोई उहदा कोई ना कोई अवगुण जां कोई उसका पिछला कर्म जरूर देखने की कोशिश करते हैं। भगत जी कहते हैं मेरिया निगाहां च मैं अपने अंदरों जो भी जोड़िया सी कहते सब पाड़ के रख दिता, अगर किसी नाल नहीं सी बनती तो उसनू जाके आप बुला ले, कोई अगर मैनू मैला लगता सी तो उसनू आख्या गले लगा के भाई तू ही मैला नहीं, मैं ते तो भी खुद ज्यादा मैला, जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटो। जेड़े गलत सुभा पक चुके सन, आलस का सुभा गलत है, निंदा का सुभा गलत है, चुगली का सुभा गलत है, होमे का सुभा गलत है, उच्चा बोलन का सुभा गलत है, कौड़ा बोलन का सुभा गलत है, ये सारे पक्के हुए सन। कहते सारे दे सारे मैं दिस वॉज द सैकेंड इफेक्ट ऑफ द साध संगत, कहते मैं ये सारे दे सारे फौरन पाड़ सटे, डिले नहीं की, जोई जोई जोरियो सोई सोई फाट्यो, झूठे बंज उठ ही गई हाट्यो। वह कहते जी झूठ की दुकान खोली उसी मैं, वो उठ ही गई है, खत्म ही हो गई। अखीरली लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही अर्थपूर्ण है, जिस दे विच भगत रविदास जी आखते हैं पहला उसनु सुनो फिर उसका असी अर्थ करांगे।

सत्संग जी गुरु रामदास पातशाह कल्याण मोहल्ला चौथा प्रभु की जय कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे और ये जो है राग आप श्रवण कर रहे हो ये हमीर कल्याण है। गुरु पातशाह गुरु रामदास महाराज और जो ये रीत है बड़ी पुरातन रीत है पांच ताल दी बराबर दी सवारी है और आज छोटे छोटे बच्चे सामने बैठे हैं मैं कह जरा इन्होंने भी हैरान करिए आज तो गुर दे दे के क्योंकि इस तरह ही बच्चे सीखते हैं उत्साह बढ़ता है गुण गाण नाल ही रब नाल प्यार बनता है जो

सिर्फ मिठिया ही स्वीट चीजा ही नहीं, और बहुत सारी चीजा जो प्यारियां लगदियां स्वादलियां लगदियां, कहिंदे मिठियां समझ के उन्होंने खाया पर कौड़ा उपजा साग, पर उन्हां दा रिजल्ट जो है अखीर दे विच जाके वो स्वाद कौड़ा निकले, उस दे विच कुड़त्तन निकली, शरीर ने ही वह बीजिया पर शरीर में ही वह भोगना पै गया, भोगंग तरोगंग, शरीर ने ही भोगां दी मौज माणी पर शरीर नूं हुण रोग भी सहने पैने हैं, भोगंग तरोगंग, जितने ज्यादा भोग उतने ज्यादा रोग, जितने ज्यादा डिशेज उतने ज्यादा डिजीज। गुरु बाबा जी कहते हैं ये तन मेरा कोई सफला करदा है, वरना इस तन दे नाल मैं रोग अते दुख अते पेन ही ग्रो करदा हां, वो खुद मैनू खानी पैंदी है, उदों बड़ी तकलीफ हुंदी है। महाराज जी एक जगह होर बाणी चाकदे हैं, कहते हैं जे सौ वरिया मिठा खाए, कहते हैं

जितने भी शरीर में रस हन उतने ही दुख लगते हैं। इस करके महाराज जी ने एक पंक्ति दे विच गृहस्थियों नूं खास करके गृहस्थियों नूं यह समझाया है कि जे तुसी गृहस्थी हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुहानू अकाल पुरख वाहिगुरु ने जां सतगुरु ने एग्जेम्पशन दे दित्ती है कि हुण तुसी जो मर्जी खाओ पियो भोगो रस माणो। नो, तुहानू भी योगियां ऋषियां मुनियां वाली ही साधना तपस्या करनी है भावें तुसी गृहस्थी हो, क्योंकि असीं कई दफा सोच लैंदे हां ना कि असीं तां गृहस्थी लोग हाँ, असीं कोई साधु संत थोड़ो, अपने आप नूं आप ही एक्सक्यूज कर लेने हैं कि साड़ी सोशल लाइफ भी है, असी गृहस्थी हाँ। हुण गुरु साहब गृहस्थी किस नूं कहिंदे हन ये नहीं असी सुनिया, ये नहीं असी सुने, असी सिर्फ इन्ना ही सुनिया कि गुरु बाबा नानक देव जी महाराज ने गृहस्थ धर्म नूं बहुत उच्चा आख्या, ऐ सुने, ठीक है ना कि गुरु नानक साहब महाराज ने गृहस्थ धर्म नूं प्रवान किया, पर किस किस्म दे गृहस्थ धर्म नूं प्रवान किया ये दसना भी मुश्किल है, इस नूं मनना भी बड़ा मुश्किल है, तो सानू शायद किसी ने दसिया भी ना हो। गुरु बाबा जी दसते हैं कि ए गृहस्थी जे तू सोचे कि गृहस्थी होने के नाल तेनू एग्जेम्पशन मिल गई है कि तू हुण बॉडी दे लैवल दे उत्ते रह के सारे बॉडी दे रस जो टेस्ट सन उन्हां नूं माणी जा, तेनू कोई तपस्या करन दी कंट्रोल करन दी अपने उत्ते कोई मास्टरी करन दी लोड़ नहीं है, क्योंकि चूं तू गृहस्थी है इस करके यू आर अलाउड, वह कहिंदे ऐसी गल नहीं। हुण पंक्ति सुनने वाली है बहुत प्यारी, कहिंदे

है गृहस्थी, इसके अर्थ सुनो। सो गृही जो निग्रह करे, कहते गृहस्थी वो है जो निग्रह करे। निग्रह का मतलब, निग्रह का मतलब है कि अपनिया इन्ह सेंसुअल प्लेजर्स दे उते अपनी मास्टरी अचीव करे, इन्हों का मास्टर बने, इन्हों उते काबू पाए, इन्हों उते कंट्रोल करने का अभ्यास करे। बेशक आहिस्ता आहिस्ता करे, आहिस्ता आहिस्ता करे, पर एक दिन ऐसा उसके जीवन दे विच आए कि वह उन्हां इंद्रियां दे रसां दा गुलाम न रहे। क्योंकि जो इंद्रियां दे रसां दा ही गुलाम रह गया, वह शरीर दे ही तल ते रह गया, वह शरीर तो बॉडी तो अगां इवॉल्व नहीं होया। जो बॉडी तो अगां इवॉल्व नहीं होया, उसनूं दोबारा फिर बॉडी दे विच पाया जाएगा। वो फिर जन्म मरण दे विचों गेट चो मुक्त नहीं होया, द्वारा उसे ही गेट दे विचों फिर आ जाएगा। और ये भी पता नहीं किस किस्म की बॉडी च पाया जाएगा, ये भी कोई पता नहीं ना। जो शरीर दे लेवल ते अपनी लाइफ नू एंड करता है, दैट विल कम बैक इन टू द फॉर्म। तो महाराज जी आखते हैं सो गृही, ओ गृहस्थी है जेड़ा गृहस्थी हुंदिया होया, गृहस्थ विच रहिंदिया होया कि प्रैक्टिस करे अपनिया इन्हां इंद्रियां दे तमाम रसां नू मास्टर कर लै, कंट्रोल च कर लै, काबू च कर लै, ते इन्हां नू जित लै। सो गृही जो निग्रह करे। अगली गल, जप और तप।

जप इस मेडिटेशन, नाम सिमरन, तप है अपने जीवन दिया, अपने बिहेवियर दिया, तमाम जो जो लो नेचर दे जो साढ़े सुभाहन, जितनी भी साड़ी लोअर नेचर है, पशुओं वाले सुभाहन, अपने आचरण नू, अपने बिहेवियर नू, अपने लाइफस्टाइल नू तब्दील करन दी तपस्या करे, तपस्या करे। तो नंबर एक, इंद्रियां उत्ते इना दे रसा कसा उत्ते काबू पाउन दा अभ्यास करे, ए तप करे। दूसरा, अपने आचरण अपने कर्मा नू निर्मल बनाने दे वास्ते तपस्या करे, जप तप संजम, अते अपनी जिंदगी च संजम लियावे। संजम दा मतलब, संजम दा मतलब कि ओ अपनी नीड्स नू कटावे, अपनी नीड्स नू अननेसेसरी ना बधाई जाए। पदार्थां नू देख के मार्केट दे विच, बाजार दे विच जो कुछ भी एडवरटाइज किया जाता है, यह जरूरी नहीं है कि उसनू उसने खरीदना ही। बहुत वाइजली अपनी नीड्स नू समझे, अते अपनी नीड्स नू वध तो वध सादगी दे विच, सिंपलिसिटी दे विच रखने की कोशिश करे। यह है मतलब संजम दा, कि लाइफ नू बहुत होवे बहुत ब्यूटीफुल, एलिगेंट, पर बड़ी सिंपल होवे, बहुत सिंपल होवे, और ऐसी होवे कि जिसनू मेंटेन करन दे वास्ते उसनू दिन रात भटकना ना पवे। क्योंकि कई दफा सानू अपने एक्सपेंसेस पूरे करनो ही, अपने बिल्स पूरे करनो ही, सारा दिन रात सानू भटकना पैंदा है, जस्ट टू पे अवर बिल्स। पर असी उतने क्रिएट ही क्यों करिए? कबीर साहब ने आख्या है, सादा जीवन जियो। गृहस्थी ओ है जिस दे जीवन दे विच कहिंदे, जिहड़ा गृहस्थी जीवन दे विच बैठा होया इन्हां चीजां उत्ते काम करदा है, अपनियां इंद्रियां नू कंट्रोल करदा है, इंद्रियां दे स्वादां दे उत्ते ओह फतेह पाउंदा है, अते अपने आचरण नू ओह ओदी तपस्या करदा है, अते अपनी जिंदगी च संजम लियांदा है। जप तप संजम भिख्या करे, इस गल दी ओह वाहिगुरु तो भिख्या मंगदा है। पुन दान का करे शरीर, कहिंदे ओदा जिहड़ा शरीर है, कहिंदे ओह पुन दान दा एक मॉडल बन जाए, भाव पर उपकार अते सेवा, इस तो अलावा उसके शरीर का कोई मकसद ही ना रह जाए, शरीर तो यही कम लग। सो गिर ही गंगा का नीर, कहिंदे ओ है असल गृहस्थी, अते गंगा दे नीर तो भी, गंगा दे जल तो भी ज्यादा ओ पवित्र इंसान है। ऐ महाराज जी सानू साधना प्रैक्टिस दसदे हन, कहिंदे हन कोई भी अगर मैनू मेरे तन नू सफला करा दे, मैं अपना तन उसनू वेचण नू तैयार हां, प्यार नाल गाओ इसनू।

0: अत सवाले का मतलब अति खूबसूरत, हर काया बहुत खूबसूरत, कोई ऐसा नहीं भी घट खूबसूरत है जो ज्यादा खूबसूरत, बदसूरत असी बना लेने, वरना हर काया अपने आप यूनिक रब की कामनी। कहते हैं
1: काया कामण,
0: कामनी मैंने औरत,
1: अत सुवाले फिर वसे जिस नाले,
0: अते फिर जिस दे नाल रहिंदा है वो अपनी औरत दे नाल रहिंदा है, इस तो दूर नहीं जांदा, इस दे रोम रोम दे विच समाया है, उसनु अपनी औरत दे नाल इतना प्यार है, अपनी कामनी नाल इतना प्यार है, तो इस दे अंदर रहिंदा है, इस दे संग साथ रहिंदा है,

फिर सच्चे ते सदा सुहागन। कहिंदे इक आया जदों तक फिर इस दे नाल है ते सुहागन है, अते जदों तक सुहागन है इसनू कोई आंच नहीं आ सकती, इसनू कोई गम नहीं आ सकता, कोई दुख नहीं आ सकता, उदासी नहीं आ सकती, क्योंकि फिर जो नाल पति नाल। पर कहिंदे अगर अपने जीवन दे विच इस काया रूपी कामणी नू इस दे पिर नालों विच छोड़ दोगे, इस दे पिर तो दूर ले जाओगे, ये कहिंदे कुमला कुमला के मर जाएगी, ये उस विछोड़े नू सहार नहीं सकेगी, एक कुमला जाएगी, इसकी खूबसूरती टल जाएगी, ये बीमार पड़ जाएगी, ये उदास हो जाएगी, अते फिर ये पुकारेगी किथे गया मेरा साजन, किथे लै गए ये लोग मैनू, साजन देश विदेशी अड़े सानेड़े देन दी, सार संभाले तिन सजना मुंद नैन परहिंदी, ये मुंद ये जीव स्त्री ये रब दी कामणी इस दी अखां च फिर अथरू आणगे, ये फिर रोएगी, मुंद नैन परहिंदी गुण सारेंदी, उस पति नूं मिलन दे वास्ते उस दे गुणा नूं याद करदी है, अखां च इस दे अथरू हन, मुंद नैन परहिंदी गुण सारेंदी, क्यों प्रभ मिलां प्यारे, किवें अपने प्यारे नूं वापस मिलां, क्योंकि इस नूं भी तृप्ति नहीं आंदी, मुंद नैन परहिंदी गुण सारेंदी, क्यों प्रभ मिलां प्यारे, मार्ग पंथ ना जाणो बिखड़ा, क्यों पाईए प्रपारे, ना मैनूं रस्ते दा पता है, ना पंथ दा पता है, रस्ते दीआं कठिनाइयां बड़ियां हन। ते कहिंदे हन इस जो सिमली नूं देण दा अर्थ यह है कि यह जो शरीर है असीं इसनूं यह समझना है कि यह रब दी औरत है और इसका पति इस दे अंदर है, अगर कोई इस शरीर नूं इस दे पति तो अकाल पुरख वाहिगुरु तो दूर करेगा तो उस दे जीवन दे विच उदासी आएगी, विछोड़ा आएगा, गम आएगा, डिप्रेशन आएगा, दुख आएगा, अते रोना ही रोना आएगा, और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि औरत नूं उसके पति तो विछोड़ दिता जाए तो होर की हुंदा है, कहिंदे ओह कुमड़ा आ जाएगी, वह मर जाएगी, उस तो बिना उसका जो जीवन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सो तीसरा नुक्ता अज आप जी की सेवा दे विच रख्या है कि ए अकाल पुरख वाहिगुरु की कामणी है, अकाल पुरख वाहिगुरु की ए पत्नी है, ए उसकी औरत है, तो साडा अभ्यास की होना चाहिए है कि असी अपने इस तन नू जो कि रब की कामणी है कि वह वस्तुआं दईए जड़ियां इस नूं वाहिगुरु तो दूर ले जाण, वह वस्तुआं दईए जो इस नूं गंदगी दे नाल भर देण, वह वस्तुआं दईए जो इसकी बुद्धि नूं भ्रिष्ट कर देण, वह वस्तुआं दईए जो इसकी बुद्धि दे विच बेहोशी लियाण, इस नूं असीं बेहोश करिए, ऐसा गुनाह फिर माफ कित्थे कीता जाएगा। फिर साडा फर्ज बनता है यह रब की औरत है, इसनू जिस तरह रब ने बनाया उसे तरह ही असी रख के संवार के शिंगार के इसनू उसकी दुल्हन बना के रखिए, उस दे विच कोई ऑल्ट्रेशन करन दी सानू इजाजत नहीं है, क्योंकि डिजाइन जो इसका है जिस तरह भी उसने चाहा है उसने आप बनाया है, ये उसकी औरत, अते हमेशा इसनू उस वातावरण दे विच रखिए ताकि एक काया रूपी औरत अपने पति दे पिर दे नेड़े रहे, वो वातावरण की है, वो है सत्संग, वध तो वध सत्संग हो, पर जितना असी इसनू सत्संग तो दूर ले जांगे उतना ही है अकाल पुरख वाहिगुरु तो दूर चली जाएगी, और जितनी दूर चली जाएगी उतनी ऐसा भी हो जाता है कि एक काया बहुत ही दूर गई गई फिर पिर नूं भी भुलना शुरू कर जाती है, और जो अपने पिर नूं ही भुल जाए पति नूं ही भुल जाए उसका हश्र की हुंदा है, बहुत भयानक हश्र हुंदा है। सो एक एक नुक्ता इतना गहरा है कि गुरु साहब आखते हैं
ਇਹ ਕਾਇਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਇਹ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਾਮਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਬਸ ਅੱਜ ਇਤਨਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਦਾ, ਸਫਲੀ ਕਰਦਾ, ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣਾਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇਂ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਤਨ ਵੇਚੀ ਬੈ ਕਰੀ ਜੇ ਕੋ ਲੈ ਬਿਕਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਸ ਤਨ ਨਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਨਾ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਤਨ ਨੇ ਵਿਕਾਰ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੇਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਟਰੀ ਅਚੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਭੀਖਿਆ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਭੀਖਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋ ਉਹ ਦਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਪ ਦੇ ਅਤੇ ਤਪ ਦੇ, ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਬਸ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਵਿਕਾਰ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਜੋ 13 ਨੁਕਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 13 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਮਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਵਿਛੋੜ ਦਿਓਗੇ ਇਹ ਕੁੰਬਲਾ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਰੋਏਗੀ, ਇਹ ਗਮਗੀਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਉਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਫੂਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਓ ਕੀਰਤਨ।